नमस्ते सीताराम अस्सलाम वालेकुम स्वागतम सबको वेलकम टू डिस्को प्रेमी।

नेह कक्कर, बेनी दयाल, रिदेश शंदीली, बादशाह एंड द सॉन्ग इज त्रिपी त्रिपी. लेट्स एंजॉय ऑन लेमन रेडियो.